साहेब देखे कटू है साहेब देखे कटू है और आज मामा कतारन ने साहेब देखे कटू है साहेब मगे साहेब मगे पहले से कतारन ने खाओ तो कतारन ने हाँ बड़ी मारते थे हरियाणा है ना शहर देखा शहर देखा ही कटू है हाँ हरियाणा वहाँ पीएम जब लोग देखा हुई चलो बने लोग कतार नहीं बिल्कुल ऐसे रहा यार इधर ना दिल रहती है ना शहर देखा ही कटू देखा शहर देखा ही कटू है

0: पिटा है पा ये आना ये आना
1: आदेश दे दो अंतिम
0: गवर्नर का है पा
2: अभी क्या है पा अबड़े है पा अभी क्या है पा अभी क्या है पा अभी क्या है पा
0: अभी क्या है पा राजा करावन है राजा करावन
3: Aduh, aku dulu.